0: आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम, ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो, खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना, सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल, स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो, स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश, सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश, खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं, लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: इज दैट क्लियर?

0: रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं। हो गया।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 FM सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल्ड स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोतमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकौड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टोमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह। उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है, थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अप्पम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी बेटी, सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था, सुबह का मतलब होता था मुर्गे की आवाज, कुकड़ुक कु, सुबह 4:30। मिट्टी की खुशबू और दूध वाले के बर्तनों की खनक, और साथ ही साथ वही गांव में रहते थे केशव और उसकी पत्नी गंगा। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें,

रहा था। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, पहले चूल्हा जलाती थी, फिर पानी भरने को किलोमीटर तक दूर कुएं तक जाती थी, कपड़े धोती थी, बकरियों को चारा देती थी और शाम तक घर संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था। मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो या हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी। कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंचर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी। उस रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया। गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था, उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती, कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया, 3 साल बीत गए। पूरे 3 साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सच धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला, उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। तो दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी, शराब पीना, जुआ खेलना, कर्जा, न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा, लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया, उसकी सांसें रुक गई। डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उठा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली। उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। 3 साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची।
उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी मां भी उसके लिए पैसे बचाती थी और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी, भगवान बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, आप चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ तो चलिए देखते हैं अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान। डब्बा वापस था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला, पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे, ये कैसे हुआ। फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा, चंदा बाहर आई। चंदा ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है। चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या। गंगा चुप हो गई, उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाए, बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल। अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंख बंद करो, आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है। तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या। नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक। गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए। गंगा मुस्कुराई, तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना। केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हो। केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नियत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ। अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा, वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई।
केशव ने पूछा,

0: कहाँ चले?
1: गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ सपने पूरे होते हैं। बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी और पीछे पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है।
0: तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहां केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार जरूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियां लेकर जो आपकी दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्टन दोस्त RJ शब्बीर साइनिंग ऑफ।

0: Hello everyone, you are listening to Acharya 90 FM, your own radio. Today we have with us Ms. Achal Singh and guest with us Ms. Smita Mishra. And also we have our own intern Pranav Nair. And we are going to talk about suicide prevention. Let me introduce our guest. So Smita is mental health professional visiting faculty at NMIMS College, actively doing awareness session around teen mental health, and a trauma-informed psychologist. So I would like to ask question to our guest, Smita ma'am. Let's tell our audience the basic, what is mental health?
1: Okay, so mental health again, we need to discuss isolation mein, I feel discuss nahi karna chahiye. Jab hum health ki baat karte hain, health mein, हेल्थ की अगर WHO के डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का एब्सेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्प्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम करता है. तो मेंटल हेल्थ, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कन्फ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ. सो नॉट एवरीवन इज़ मेंटली इल, बट एवरीवन हैज़ अ मेंटल हेल्थ they need to take care of, just like they take care of their physical health. It's about their emotions, their feelings, their personality. That's about it.
0: So aajkal hum dekh rahe hain ki specifically agar baat kiya jaye young adults ke bare mein, what would be your advice on mental health, how they can prevent themselves from the suicidal thoughts and everything?
1: How they can prevent themselves from suicidal thoughts? ओके, आई थिंक अगेन हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स, उसकी रूट्स क्या है एंड क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन. देन हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स. जब एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, भले वो बच्चा हो, ओल्डर कोई हो, जब उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, इट इज़ टू एंड दिस लाइफ. तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा. दिस इज़ हाउ, दिस इज़ नो सुसाइड. एंड देन हाउ दे कैन प्रिवेंट इट, there are different like methods to do that, but jab hum suicide prevention ke bare mein baat karte hain, I just want to take a moment and highlight ki jo suicide prevention ka responsibility hai, ye akele ek bacche ke upar ya akele ek individual ke upar nahi aana chahiye, jo usually aata hai. Kyunki hum suicide prevention ke bare mein jab hum baat karte hain to hum bolte hain ki it is up to that individual or their therapist, but I feel that prevention is a collective responsibility. And when I say collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role. Media has a role ki wo kaise डिपेक्ट कर रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है सुसाइडल केसेस, क्या उसको वो सेंसेशन बना रही है या सेंसिटिवली हैंडल कर रही है. देन अ वेरी बिग रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, स्टेट, डू दे हैव दैट इनफ रिसोर्सेज जहाँ पे प्रिवेंशन के लिए, मतलब वो कंडीशन है जहाँ पे वो लास्ट स्टेज पर पहुँचे ही ना. तो प्रिवेंशन के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि हाउ दे शुड डू इट, इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. Because it's a collective responsibility.
2: Yeah. So, I wanted to ask, ki, what do you think, what is the very general problem that every teenager go through, which might lead to take this big step in their life?
1: Mm-hmm.
2: It can be anything. But what do you think, with your experience, is the general problem a student or a teenager go through?
1: Since you're asking about just general problems, again a disclaimer, that whatever I will share here right now is based on my readings, my personal experience and my discussion with teenagers. So whatever I will share, वो ज़रूरी नहीं कि सबको equally वैसा apply हो, सबके cases अलग अलग हो सकते हैं, but जो recurrent चीज़ें हैं I might even miss out on few, but जो data भी हमें बार बार बताती है, that is, A would be loneliness. A lot of teenagers, a lot of young adults today feel lonely despite having a lot of people around them, and it's not like they are not trying to do anything to feel less lonely. Agar 2023 mein WHO ne to declare kar diya tha ki it's a public threat, loneliness is a public threat, but aisa nahi hai ki nahi try kar rahi hai. Uska jo contradict, हम आयरनी देखें तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देर इज प्रेशर टू एंजॉय, देर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शन. इट्स द सेम थिंग लाइक इफ वी वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर यूजिंग डेटिंग एप्स, एंड आई एम इन नो पोजिशन टू से कि वो यूज करना गलत है या नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज हेल्पिंग पीपल फाइंड कनेक्शन, देन आई नो, बट देन देर समथिंग कॉल्ड एज डेटिंग बर्नआउट जो लोग फील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू वर्क प्लेस बर्नआउट. और वर्क प्लेस बर्नआउट में भी वही इमोशनल एग्जॉशन होता है, सब कुछ लाइक एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज यहाँ पे हम जो स्वाइप करते हैं डेटिंग ऐप में, द जॉब हियर इज टू फाइंड कनेक्शन. सो देर इज अ लॉट ऑफ एग्जॉशन दैट दीज पीपल नॉट दिसन फील, सॉरी फॉर द टर्म, our generation feel to make a meaningful connection. So there's a lot of sense of loneliness, and then apart from this, there's also constant conflict in relationships. And when I say relationship, it is beyond two partners who are dating, it goes to the families as well. A lot of the time a teenager simply feels ki why are they not listening to me, yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them. On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is B. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure like societal pressure about performance, about marks. मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है अबाउट द केसेस, बट इट इज़ ओनली जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर हम डेटा की बात करें तो ओनली 1 समथिंग पीपल आर ओनली लाइक, और ऑल्सो वन मोर थिंग, देर इज नॉट वन पर्टिकुलर कॉज टू सुसाइड. अगर अगेन मीडिया में भी रिप्रेजेंट करते टाइम काफ़ी लोग ना नैरो डाउन कर देते हैं. अगर आपको रिसेंट याद रहेगा न्यूज़ में जो आया था अबाउट वन फैमिली, teenager jumped from the cliff and then both the parents also followed, and media mein usne usko sensation bana diya gaya tha jahan pe ek particular reason ke sath usko connect kar diya gaya. But it is not just about one particular reason, it is the result of so many other stressors that a person is facing.
3: So ma'am, I do have a question about, like aapne bole karke family ke bond ki wajah se bhi jo person hai wo suffer karta hai, so आई डू वॉन्ट नो करके अगर फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, ऑन अ पर्सनल नोट आई थिंक आई द पर्सन चूज अनदर कैरेक्टर टू लिव, लाइक वो उन्हें हाई पे भी लेके जा सकता है, एंड ऑन अ नेगेटिव नोट वो पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा सकता है. आई डू वॉन्ट नो योर थॉट्स ऑन इट. लाइक मैम, अगर एक बच्चे का अपने डैड के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं है, तो वो पर्सपेक्टिव से वो बच्चा आइदर एक अनदर पर्सनैलिटी चूज करके एक हाई पे जा सकता है. अनदर पर्सनैलिटी मैम लाइक गिव ऑन द इमोशन, लाइक इमोशंस को पीछे छोड़ के. तो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
1: येस, इफेक्ट करता है, बट आई थिंक आप दो चीज़ कुछ कंपेयर कर रहे थे. आई वुड वांट टू कंप्लीट.
3: इफेक्ट करना इन द सेंस, अभी जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास, सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर, स्पोर्ट्स हो गया लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, सो डज इट हेल्प?
1: ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देन फॉर समवन इफ दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म लाइक इफ दे आर एज यू सेड कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डज हेल्प देम.
2: Another question would be, if being a teacher, so there are a lot of students where I see that, you know, all of a sudden changes in behavior, and suddenly वो एकदम शांत हो जाते हैं, suddenly behavior change हो जाता है. So that I am noticing, but at the same time, I also wanted to understand कि क्या as a teacher or let's say as a older people than the younger ones. कैसे हम वो पैटर्न को समझें एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम,
0: ओके,
2: एंड हाउ विल वी यू नो कंफर्ट देम और यू नो मेक देम.
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव एफर्ट है, सबका रोल है, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. कि अगर स्टूडेंट या इरेस्पेक्टिव लाइक द रिलेशनशिप कोई हमसे छोटा किसी डिस्ट्रेस में है, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें. आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनालिटी में. अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है, तो एक वो क्लियर कट साइन है. बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया है, या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर, बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया, मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू. नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैम, सिट विद दैट चाइल्ड एंड बी वर्बल अबाउट वॉट यू सॉ और वॉट यू नोटिस्ड, एंड विदाउट बीटिंग अराउंड द बुशेस डायरेक्टली आस्क, आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग योर सेल्फ, आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड. नाउ ये बोलने में बहुत डिसकम्फर्टिंग लगता है कि ये डायरेक्टली कैसे बोले, मतलब इससे तो फिर हो जाएगा कि हम आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा कि कहीं कहीं साइंस है, बच्चा बोल रहा है कि देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग, या मेरा बस हो गया है, या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं, अगर पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं, तो बच्चा सडनली अपने पासवर्ड सब लिख रहा है, या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट साइंस टू पिकअप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देर एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू. और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो, तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. I told you कि pick up on that and so इसी को अगर continue करें हम, तो एक gatekeeper training होती है जहाँ पे हम training देते हैं लोगों को कि suicide prevent कैसे करें, क्या next step करें, तो एक model होता है which is called as QPR model. तो Q में you ask questions and then यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि directly पूछो, then P में it is not like कि आपको suddenly उसको persuade करना है कि don't do it. सडनली वो होगा भी नहीं, और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए. तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके, मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है.
0: अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, तो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है. अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो इट्स द रिस्क इज मच हायर एट दैट टाइम. तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन में यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू मेक टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सोल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि येस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज हैंडल करेंगे एंड देन आर इज टू रेफर इट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, इमरजेंसी केयर सेंटर्स. अगर ये सब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आपको आप कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि लेट्स टुगेदर कॉल देम एंड लेट्स टॉक टू देम. तो टेलीमेनस एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कॉल इसका आई कॉल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको इमीडिएटली छोड़कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है, लग रहा है हायर है, तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम, इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट पर्सन.
2: Very insightful information and definitely ये सभी के काम आने वाला है, not just as a teacher but as a adult who is a grown person and not only grown person but whoever it is listening, वो सबके काम आने वाला है. एंड इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी विल कम बैक.

0: welcome back, and we were talking about suicide prevention, and we have a guest with us, Ms. Smita Mishra, and we will continue the topic.
1: As a mental health professional, I have heard that there are so many myths and so many stereotypes around someone who's struggling through mental health or someone who has reached to a point where they are getting suicidal ideation. And the common myth that I have seen or heard about is that if you talk about suicide, it can make things more worse. Mm-hmm. So I want to ask that, is that true?
2: No. A single word answer, no. Talking about it helps us open the channel for conversation. The problem is not talking about it. And that exactly what leads to myth and stigma around mental health. Kyunki hum baat nahi kar pa rahe hain. Kyun agar suppose jo aapne bola na last moment tak pahunch jata hai, to yahi hai na ki hum wait karne lagte hain. Agar suppose koi physical problem ho, agar chest mein koi burning sensation hai, तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर एक्सरे वगैरह करा लेते, सब टेस्ट कराते, सब नॉर्मल भी आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एसिडिटी. बट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट चेक्ड. हम वो हेल्प लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ, हम डिले कर देते हैं. और वो डिले की वजह से बात फिर इतनी आगे बढ़ जाती है कि दैट सुसाइडल आइडिएशन इज नाउ हैज रीच्ड टू द पॉइंट जहाँ पे a person is actually thinking about ending their life.
1: That is completely true. That is correct. Can you tell me certain myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
2: Yeah, myths like talking about it will give out the impression that you are weak or you are not strong enough. और टॉकिंग अबाउट इट इज नॉट नॉर्मल. तो यही जो नॉट नॉर्मल वाला फिनोमेना है, या लोगों को कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं फील होता है बात करने में, नॉट जस्ट बिकॉज कि आसपास लोग नहीं है ट्रस्ट करने वाले. हो सकता है कि ट्रस्टफुल लोग हैं, हो सकता है फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, बट उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है. वो कोई मॉडल करने वाला कभी कोई एडल्ट था नहीं. सो व्हाई मोस्ट ऑफ द younger people are struggling to speak about it is also because a lot of older people are still struggling to talk about it. They have never experienced a grown up be vulnerable. या उन्होंने नहीं देखा है लोगों को express करते हुए उनकी weaknesses या अपने emotions के बारे में बात करते हुए उन्होंने नहीं देखा. तो when a child is growing up या थोड़े वो teenage या adult इसमें पहुँचते हैं तो वो धीरे धीरे accept करने लगते हैं कि I think यही रियलिटी है. मुझे अगर मैच्योर रहना है देन आई नीड टू बी टफ, या आई शुड नॉट शेयर इट विद एनीवन एंड आई शुड डील विद इट ऑन माय ओन. एंड देयर आर अगेन एज आई सेड कि मीडिया आल्सो हैज अ रोल इन इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम दैट सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइज दिस होल थिंग ऑफ डूइंग इट ऑल अलोन. एंड आई एम नॉट सो नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स अलोन, बट इट इज नॉर्मलाइज्ड इन such a way, it is glorified or romanticized in such a way that it is limiting people to take help. Why in India people who have never read, they who were never interested in reading, why are they interested in reading self-help books? It is because the idea of helping themselves, yeah, taking care of their mental health is only up to them, their own responsibility. तो बाकी लोगों को इस पर इन्वॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ये ऑल दिस थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग देम इन आस्किंग फॉर हेल्प. या आस्किंग फॉर हेल्प वुड बी अ सेकेंडरी, सिंपली टॉकिंग अबाउट इट इज डिफिकल्ट इज बिकॉज उन्होंने नहीं देखा है कि कोई बड़ा उसके बारे में बात कर रहा हो कभी.
1: करेक्ट,
3: एग्जैक्टली. आई वुड गिव ओपिनियन अबाउट दिस कि हम जनरेशनल गैप होता है. When you talk about parents and when you talk about children, there is a lot of generational gap and understanding gap. जहाँ पे if we see आजकल के generation में mental health is very much important. And older generation को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे I think physical health was much more important and awareness नहीं थी.
2: नहीं थी, right.
3: आज की जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्ले
2: वेयर इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
3: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एब्सोल्युटली.
3: एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
2: करेक्ट. एंड राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
3: सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीजों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर, आई वॉन्ट नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव. सो दे आर नेचर इज
2: यस या हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक नाम चीज बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पर किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, इमोशन में जो दिख रहे हैं, ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे हो जाए जो नहीं दिखाई देते या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पे फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेक इन करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
3: एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया वेयर people have lot of मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देर विल बी हरासमेंट, देर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स, एनी वन.
2: ओके,
3: तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
2: वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला एक हरासमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हरासमेंट इज अ वेरी इज अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया हो या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज एक्सप्लिसिट या that made a person feel unsafe, then it is very important that we report that case and cyber security ka wahan pe help le. Second, about someone posting things which is very closely related to feeling of hopelessness ya koi aisi poetry likhna jahan pe thoda sa sadness jo hai wo chalak raha hai ya sad status lagana, to kai baar log bolte ki ye to har mahine ka hai iska, ye attention seeking activity hai, ye karte hain. To I would just want to say ki pick up that sign, even though if it's an attention seeking activity they are telling you that they need attention, so it is very important that you do not ignore them. And what ho sakta hai ki unki artistic personality hi ho ki wo sad sab kuch post kare, fir bhi unse baat karo, kindly check up karo, shayad wo dismiss kare is cheez ko, theek hai shayad nahi hai wo cheez, but it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? वॉट इफ एवरीथिंग वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ देम एंड हमने अज्यूम कर लिया कि इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी और दैट्स हाउ द आर्टिस्ट माइंड वर्क. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है, देन इट्स अ क्लियर बिग साइन, गिव देम अटेंशन, टॉक टू देम.
4: मैम डू यू थिंक लाइक सोशल मीडिया रीच आउट टू यू फर्स्ट वॉट एवर लाइक आपका जो भी थाट्स या फिर फीलिंग्स आपके जो चल रहे हैं ना, सिर्फ थाट्स, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया. बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. लाइक if you are dreaming about something and the next moment you open the social media, you see them, like,
2: okay. Now about algorithm, aap media ke student so aap mujhse zyada jante ho yahan pe, to fir correct me if I'm wrong, do you think abhi koi aisi technology aayi hai jahan pe phone jo hai padh raha hai hamare dreams?
4: Yeah, I do think
2: aayi hai.
3: I think moreover, padhne se zyada whatever we are talking or whatever we are searching.
1: Exactly.
2: Yes, absolutely. That is being recorded and that's how your algorithm picks it up and then constantly aapko usi cheez pe कंटेंट बार बार दिखाया जाएगा और जब कॉन्स्टेंटली उसी चीज को एक्सपोजर आ रहा है तो अनकॉन्शियसली जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो ड्रीम में भी आएगा. तो इट इज ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही लाइक इट इज शॉकिंग एंड बट इट इज सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेम्बर सीइंग अ post that talks about ki people have so many good things to talk about you but for that you need to end your life.
3: Yeah,
4: that's of my point. Course. Like social media presents both positive and negative
2: perspective. Extremes are there, yes. Right? So agar aap social media handle kar rahe ho ya manage kar rahe ho, media ko represent kar rahe ho, so it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now media jaise काफी हेल्प किया है मीडिया ने टू गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं या एजुकेशनल कंटेंट अराउंड मेंटल हेल्थ कंज्यूम कर पा रहे हैं. काफी सारे साइकोलॉजिस्ट है साइकेट्रिस्ट है जो कंटेंट बना रहे हैं एक्टिवली. बट ऑन दी अदर हैंड उस सेम एल्गोरिदम में उस सेम मीडिया में हमारे पास एक्सट्रीम कंटेंट है जहाँ पे जो क्योंकि अब साइकोलॉजिकल वर्ड्स काफी अवेलेबल है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन अ वर्ड यूज नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पे. तो वी नीड सच लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इफ यू आर ऑन मीडिया बिकॉज इफ माई स्टूडेंट्स आर लाइक लिसनिंग टू मी दे नो कि मैंने कितनी बार उनको बोला है डू नॉट कैजुअली यूज दीज वर्ड्स दे आर रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन डू नॉट यूज इट इन योर बायो दैट आई एम अ साइकोटिक person या like do not make fun of these stuff.
3: Yes.
2: Do not make it cool कि kids of autistic something something bio में लिखा होगा. So treat mental health conditions as a condition. हम किसी दूसरे physical condition को इस तरह से bio में लिख के मजाक नहीं उड़ाते हैं. तो this words का use करना is not helping us in any way. It is sort of dismissing the actual value or sort of making it difficult for the person who's actually going through it, exactly. Talk about it openly because unko lag raha hai ki ye to mazak ki tarah liya ja raha hai. So there are two extremes that we need to keep in mind and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
4: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar hi rahe so do you also think ke jo PR works hote hain like Instagram pe comment sections hote hain that also like affect the audience. The person कोई एक particular person को वो चीज affect करती है like comments हो गए और response हो गए.
2: Right एक reel पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई photo post किया हो like it was a very happy moment for them but then someone will call it cringe. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या this is so cringe. So yeah, people are out there to make comments जहाँ पे they will constantly compare you no matter what you post they will
3: criticize
2: you. So yeah, that also that impacts a lot. उसका भी काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है.
3: Referring to this, I remember one of the interview kind of इच्छा चड्डा था जहाँ पे वो interview के time पे एक question आता है उसके पास कि does it impact आपके कमेंट सेक्शन में जो ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं डस दैट इम्पैक्ट्स यू. सो शी कमेंट ऑन दैट कि दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है व्हाई डज इट इम्पैक्ट
2: मी.
3: सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज टेकन
2: दैट. अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. रिचा चड्डा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एडुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज. but not everyone is equipped with that kind of support around them. Maybe someone is sitting in some rural area, because now internet is everywhere, screen touch, like good quality mobile phone is everywhere, so they are simply presenting everything and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone, so they don't understand. And wahan pe unko again depends on person to person and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
1: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Ismita and me, we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now. I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person, if I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone jinko ye choti choti baaton ka bahut farak padta hai, bahut bura lagta hai ki wo kya bolega, ye kya bolegi, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने ये पोस्ट डाला तो क्या सबको अच्छा लगेगा, और उस पर अगर कोई कमेंट करे ऐसे नेगेटिव, तो उस इंसान को बहुत फर्क पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव लाइक लिटिल दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग, लिटिल अवेयरनेस, लिटिल स्ट्रांग माइंड सेट टू यू नो हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ ठीक है, अब कोई कुछ भी बोले मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट इन लाइफ.
2: Thank you for sharing that, Anjali. Actually, that sort of is that is making me feel so grateful that we came from a background jahan pe hamare aas paas log the to remind us ki see that help is available, yeah, you can take care of these things. That's a privilege that still India mein bahut sare logon ke paas nahi hai. That the privilege of having people like our professors who are there to tell you that hey, I'm here to support you. Instead, like again, मैंने जैसे कहा कि काफ़ी collective responsibility है, तो school को भी काम करना है, teachers को भी I feel की training लेनी चाहिए कि तुम कैसे हम कैसे एक माहौल create कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना feel हो classroom में कि मैं तो failure ही हूँ. Class में जो रह के failure feel हो रहा है, घर पर रह के failure feel हो रहा है, तो it is important कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, तो हम actively सच में सब जगह training कर ही रहे हैं और बच्चे actively consume कर ही रहे हैं content around mental health, but we need to work with adults as well, with teachers, with parents, जहाँ पे we also train them कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए जरूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. नाउ दिस विल अगेन मोटिवेट मी टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन. थोड़े टाइम पहले ही मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझसे कैमरे के सामने, पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा? इट इज अप टू पीपल लाइक अस हु हैव राइट नॉलेज.
1: वन लास्ट क्वेश्चन. सो बीइंग अ प्रोफेशनल, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर आउट देयर, एनीथिंग दैट इट कैन बी पर्सनल और एनीथिंग दैट एवरीवन शुड नो दैट anything about suicide prevention?
3: And also adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte mainly because bachcha parents ke sath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. Teachers rehte hain kuch ghanton ke liye hote hain, even that is important, but at the same time I feel, my personal opinion, that parents should actually be educated about the mental health.
2: Yes. Yes. पहले तो parents को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें कि रियल प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, विच इज़ ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है. एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि नो मैटर वॉट आई एम योर फॉर यू. फिर अगर बच्चा, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे. लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पे याद आएगा कि माय पेरेंट्स सेड टोल्ड मी दैट नो मैटर व्हाट आई एम देयर विथ यू. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर शुड बी देयर. एंड सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ कम्युनिकेट करे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप भी कम्युनिकेट करो. मैंने पहले मॉडलिंग के बारे में बोला था कि बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए. तो आप भी आके अपने, अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिकअप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ. तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज वन. एंड सेकेंड, फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू इज, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है, वी डोंट नीड टू आंसर एवरीथिंग ऑल टुगेदर. हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस. सो फर्स्ट थिंग, इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन, इज जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन. Talk to anyone you feel comfortable with, your class teacher, your counselor, your friend, या any trusted adult that you have around you. And if वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, then I've also mentioned few helpline numbers that you can reach out with, जैसे टेलीमानस या आई कॉल, तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पर, इफ यू कैन मैंशन दीज नंबर्स, दैट वुड बी रियली हेल्प.
3: So that was very insightful content, and I think इस content से लेकर काफ़ी बच्चों को help होगी, काफ़ी adults लोगों को भी help होगी, and also I would highlight कि parents को भी help होगी to understand their child and understand their mental health. And बाकी जो भी सुन रहा है, मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा इस एपिसोड से. सो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा, हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच.

आचार्य 90 FM की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना भाई? दोस्तों का हालचाल पूछना मींस अपनापन जताना होता है, और अपनापन जताना मतलब स्वाद का जायका निभाने वाली बात है, है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल 1/2 कटोरी,

मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ। पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले हम इस रुशीची भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने। इसे लगभग एक मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग दो मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी, मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियाँ मॉइस्चर वाली हैं, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए। और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने, मींस अरबी के पत्ते, आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ एक सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले रुशीची भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस रुशी की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार रुशीची भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस रुशीची भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस रुशीची भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस रुशीची भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस रुशीची भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, रुशीची भाजी एकदम सात्विक, कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई, अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली, मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद, गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली, यूं ही देते रहिए अपनों का साथ, आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात। भाई त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और आस पड़ोस में खुशियां बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि जी भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मींस गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मींस गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मींस रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरणपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुम्बर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है, क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरणपोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीयन ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरण पाक का जिक्र किया है। पूरण मींस मीठी दाल और पोली मींस रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरण पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरण पोली बनती है। चलिए अब हम पूरण पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरण पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरण के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येलो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरण मींस स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगोकर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक, फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर उसे बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे, फिर चकला और बेलन की मदद से इसे एकदम प्यार से बेलना है। ऐसा करते समय हम थोड़ा आटा छिड़क देंगे। इस दौरान आप एक बात का खास ध्यान रखिए, पूरन पोली बेलते समय उसे आराम से ही बेलना है, उसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आए इसका ख्याल हमें रखना है। इस दौरान हम गैस पर तवा गरम करेंगे। अब तैयार पूरन पोली को एकदम संभाल कर उस तवे पर पलट देना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, गेहूं की रोटी या पूरन पोली बनाते समय उसे फुलाने के लिए एक ट्रिक है। हम तवे पर जब रोटी सेके तब 3-4 सेकंड के बाद उसे पलट देना है। फिर गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 मिनट तक इसे सेक लेना है। चम्मच की मदद से रोटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक कीजिए। जब तक उस रोटी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक डॉट्स ना आए उसे पकने दीजिए। कुछ समय बाद रोटी पर डॉट्स दिखने लगेंगे, फिर एकदम संभाल कर उसे पलट दीजिए। अब गैस की फ्लेम को हाई मींस तेज कीजिए। ऐसा करने से रोटी एकदम पूरी तरह से फुल जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस तरह से सारी पूरन पोली हम बना लेंगे। हमें इन्हें ठंडा करने के लिए फैला कर रखना है। अब आगे क्या करना है, तो भाई आगे हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट, उसमें एकदम संभाल कर हम रखेंगे सारी पूरन पोली। उसके ऊपर हम लगाएंगे शुद्ध देसी घी, इसको मराठी में कहते हैं तुपाची धार सोडने। उसके साथ हम रखेंगे दूध की सुंदर सी कटोरी।
आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर उन पूरन पोली की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे तुलसी पत्र। भाई वाह, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। उसके बाद एकदम प्रसन्न मन से हम भगवान को पूरन पोली का भोग लगाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा करने से आप एकदम अच्छा ही फील करेंगे। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर देखिए तो जनाब। फिर अपनों के साथ मिल बांटकर इस पूरन पोली का लुफ्त उठाइए। कैसे? तो भाई सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से पूरन पोली का एक निवाला लीजिए, उसे दूध की कटोरी में डुबाइए, फिर पूरन पोली का टेक्सचर फील कीजिए, उसका अरोमा भी महसूस कीजिए, इलायची और जायफल की खुशबू, आहा हा, साथ में मीठी महक और दूध की सफेद बूंदे, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर एकदम आराम से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए, आहा, क्या बात, एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाली ये पूरन पोली तो एकदम कमाल टेस्ट करती है, और अपनों के साथ खाने से ये और टेस्टी लगती है। इस पूरन पोली की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है पारंपरिक पूरन पोली। मनपसंद त्योहार गणपति और गौरी, गौरी पूजन में बनाई हमने पूरन पोली, खुशियों से भर गया सारा संसार, पूरन पोली पर किए हमने कई संस्कार, भिगोना पकाना और पीसना ये है खाने के संस्कार, अपनापन दिखाकर दूर कीजिए अहंकार, पूरन पोली में डाली चना दाल और गुड़, इसका टेस्ट लागे एकदम ही सुमधुर, पूरन पोली के साथ आया देसी घी, साथ में थोड़ा दूध एंड से नो टू टी, पूरन पोली का रूप जैसे मीठा पराठा, इसे पसंद करे जाट सिख और मराठा, इलायची के साथ थोड़ा सा जायफल, हमारी भारतीय संस्कृति सबको करे सफल, गौरी गणपति का आ गया त्योहार, सात्विकता से भरा हमारा भारतीय आहार। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक सात्विक भाजी। किसी भी जानवर को जोते बिना उगने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करके हमने रुशीची भाजी बनाई। कांदा लहसुन को यूज किए बगैर भी टेस्टी भाजी बन सकती है, इसे हमने बखूबी जाना। कद्दू, तोरी, मक्का, भिंडी, मटर, अरबी के पत्तों को नारियल और मिर्ची वाला मसाला हमने लगाया। फिर देसी घी में जीरे का तड़का लगाकर उसमें सारी सब्जियों को कम पानी में पकाया। अरबी के पत्तों के साथ हमने इमली का पल्प भी ऐड किया। इस प्रकार हमने एक सात्विक भाजी को बनाया। फिर हमने बनाई सबकी फेवरेट पूरन पोली। गेहूं और मैदा मिक्स करके आटा गूंथा, फिर उसमें ब्राउन गुड़ और पकी हुई चना दाल का स्टफिंग भरकर उसे पराठे का रूप दिया। इसके साथ दूध की कटोरी और तुपाची धार मींस देसी घी हमने पेश किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस तरह से हमने गौरी गणपति को हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में भोग लगाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप
जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा को मैं करूंगी डिस्क्राइब। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो, खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो, स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाई हुआ है जोश। सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश, खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं, लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ

0: हरा धनिया एक चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: Is that clear? Yes.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 FM सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इन्हें भूनकर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है, लेकिन आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकौड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टोमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह। उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है, थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब, इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा, बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अप्पम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट अंदोस आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। कहानियां आपकी जिंदगी को बदल देती है, कहानियां जिसे सुनकर आपको नींद आती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में ठहराव लाती है, कहानियां जो आपको जीने का मकसद देती है, कहानियां जो प्रेम को अलग अलग रूप देती है, कहानियां जो दादियां सुनाती है, कहानियां जो जीने का मकसद बताती है, कहानियां जो एक शर्ट के बटन में छुपी होती है, कहानियां जो गुल्लक के सिक्के में छुपी होती है, कहानियां जो बालियों की खनक में छुपी होती है, कहानियां जो पायल में बसती है, कहानियां जो सितार में सुनाई देती है, कहानियां जो राग में सुनाई देती है, कहानियां जो नजारों में नजर आती है, कहानियां जो पंछियों के झुंड में नजर आती है, कहानियां कहानियां कहानियां। तो दोस्तों कहानियां हर जगह, बस जरूरत है तो उन्हें सुनने की, उन्हें महसूस करने की। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूं मैं आज कहानियों के गुल्लक में, जिसका नाम है एक छोटी सी मदद। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेन सुबह के 8:45। सब लटकते हैं इस ट्रेन में, कभी जाके देख लो आप मुंबई में, अगर आप कभी लोकल से ट्रैवल करो तो आपको नजर आएगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होता है, इन 4 घंटों में अगर आप ट्रेन में चढ़ भी पाए तो ये आपके लिए किसी ड्रीम को अचीव करने से कम नहीं होगा। बहरहाल सुनते हैं कहानी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज की तरह लोग भाग रहे थे, किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज और किसी को इंटरव्यू। इसी भीड़ में एक 24 साल का लड़का था, अमन, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पापा एक नॉर्मल मजदूर थे, माँ हाउसवाइफ थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पिछले 1 साल से जॉब नहीं मिली थी। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसके बैग में सिर्फ एक फाइल रखी थी और पॉकेट में बस 120 रुपए। ट्रेन आई और सब लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। अमन भी किसी तरह ट्रेन में अंदर घुस गया। ट्रेन कुर्ला स्टेशन के पास पहुंच ही रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। लगभग 70 साल के बुजुर्ग, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाओ ना। दूसरा बोला, रोज ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन अमन को कुछ अलग लगा, वो तुरंत उनके पास गया। अंकल आप ठीक हो ना? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से बोला, पापा पानी। अमन ने बिना सोचे अपनी बोतल निकाल दी। बोतल में आधा ही पानी बचा था। खुद इंटरव्यू के लिए जा रहा था अमन, फिर भी उसने पूरा पानी अंकल को पिला दिया। थोड़ी देर बाद अंकल नॉर्मल होने लगे। अमन ने पूछा, हॉस्पिटल चलना है क्या? अंकल मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा।

शुगर लो हो गई थी ना, तभी स्टेशन आ गया। अमन उतरने लगा। अंकल ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा तुम्हारा नाम? अमन। फोन नंबर? अमन मुस्कुरा दिया। अंकल उसकी जरूरत नहीं है, और वो भीड़ में खो गया। कट टू इंटरव्यू हॉल। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप 12 मिनट लेट हो। अमन ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एंट्री नहीं दी। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैं ट्रेन में नहीं रुकता। उसने घर फोन नहीं किया, सीधे मरीन ड्राइव चला गया, हताश मायूस होकर। समंदर के सामने बैठकर बस ये सोचता रहा, एक छोटी सी मदद और बदले में इंटरव्यू भी चला गया। उसे लगा, अच्छा इंसान बनना शायद प्रैक्टिकल दुनिया में लॉस की डील है। उस रात घर जाकर माँ ने पूछा, इंटरव्यू कैसा गया बेटा? अमन ने झूठ बोल दिया, अच्छा था माँ। पापा बोले, जॉब मिल गई। लेकिन अमन जानता था, आज उसने एक मौका खो दिया है। दो दिन बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं अमन से बात कर रहा हूँ? जी, कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ सकते हो? पर क्यों? सर ने बुलाया है। कौन सर? बस आ जाइए। फोन कट। अमन को लगा कोई फ्रॉड होगा, लेकिन एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। अगली सुबह वो वहां पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनते ही बोली, सर आपका ही वेट कर रहे थे। अमन कंफ्यूज हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सामने वही ट्रेन वाले बुजुर्ग अंकल बैठे थे, लेकिन इस बार सूट पहने हुए, साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स। अमन शॉक हो गया। अंकल आप? अंकल मुस्कुराए, बेटा मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। अमन की सांसें रुक गई। अंकल बोले, उस दिन ट्रेन में किसी को नहीं पता था मैं कौन हूं, सबने मुझे इग्नोर किया, सिर्फ तुम रुक गए। मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुलाया हूं यहां पर, मैं देखना चाहता था क्या तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उस दिन थे। और यहीं से अमन की जिंदगी पर एक नया मोड़ आया। वो नया मोड़ क्या है तो सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले में दोस्तों एक बात ये जरूर समझिए कि आपकी की हुई छोटी सी मदद, छोटे से भी मदद, यानी किसी को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को बिस्किट्स देना हो या किसी भूखे को एक वड़ा पाव खिलाना हो, कोई भी छोटी से छोटी हेल्प, बहुत छोटी हेल्प कभी वेस्ट नहीं होती, कभी जाया नहीं जाती। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे कहते हैं ना कर्मा हर जगह होता है। तो आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वो आपको आपकी जिंदगी में अच्छाई की ओर ही लेके जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो किसी के लिए तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं, इस ब्रेक पर सुनते रहिए गाने और ब्रेक के बाद फिर से आइए, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत मजेदार है। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। इतनी सारी कहानियां कहां कहां से खोजनी पड़ती है क्या बताओ, पर ठीक है। फिलहाल हम थे अमन की कहानी पर। अमन ने कैसे एक बुजुर्ग इंसान को ट्रेन से रुककर हेल्प की और बाद में उसका इंटरव्यू चला गया, वो बेचारा हताश होकर मरीन लाइन्स पे बैठा, फिर घर आया, घर पे झूठा जवाब दिया। हाँ, मैं क्यों ये कैब बता रहा हूँ, आप तो सुन चुके थे ना कहानी, तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अमन अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि लोकल ट्रेन में जिस बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया था वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर थे। उनका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरी सिर्फ जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा भी वापस लौटा दिया। अमन ने धीरे से कहा, सर मैं तो सिर्फ वही कर रहा था उस दिन जो हर इंसान को करना चाहिए था। राजेंद्र जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बेटा बस उसी कार्य की वजह से, उसी मदद की वजह से आज आप यहां हमारे सामने बैठे हैं। इस बार इंटरव्यू में अमन से टेक्निकल क्वेश्चंस कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा पूछे गए। एक सवाल पूछा गया उससे, कल अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हो और किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए तो क्या करोगे? अमन ने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे बोला, पहले उसका पेट भरूंगा, पैसे दोबारा आ जाएंगे, भूखा बचपन दोबारा नहीं आएगा। रूम में बैठे हुए सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ। राजेंद्र जी खड़े हुए और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेलकम टू आवर फैमिली। अमन को जॉब मिल गई लेकिन उसने कभी किसी को ट्रेन वाली बात नहीं बताई। उसके लिए वो मदद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बस एक अच्छी आदत थी जो शायद वो हमेशा हर जो जिसको मदद की जरूरत हो उस इंसान को हमेशा वो मदद करता, वो उसकी एक अच्छी आदतों में से थी। अब अमन को जॉब मिल गई, अमन नौकरी करने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, दो महीना गुजरा, गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए और एक नए सफर का अब हो गया आगाज। अमन कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बन चुका था। ऑफिस में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन राजेंद्र जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन मेरी एक विश है। जी सर बोलिए ना। हर फ्राइडे हम लोग किसी न किसी की मदद करेंगे। अमन हैरान हुआ, सर कंपनी? राजेंद्र जी बोले, नहीं हम। उस फ्राइडे दोनों बिना किसी मीडिया बिना किसी कैमरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, किसी पेशेंट की मेडिसिन भर दी, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर दी, किसी बुजुर्ग के लिए हियरिंग मशीन खरीद ली और हर बार एक ही शर्त होती, कभी किसी को मत बताना किसने मदद की। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसकी शायद कभी राजेंद्र जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जिंदगी में वो अपने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय के साथ जाकर ऐसी मदद लोगों की करेंगे। एक दिन ऑफिस की पैंट्री में प्यून रमेश उदास बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन है, फीस नहीं भर पा रहा। उस रात अमन ने अपनी सेविंग से उसकी आधी फीस भर दी। बाकी इम्प्लॉयज को पता चला, सबने मिलकर बाकी की अमाउंट अरेंज कर दी। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए,
किसी ने बुक स्पॉन्सर्स कर दी, दो दिन में पूरी फीस जमा हो गई। रमेश रो पड़ा। उसकी बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस दिन ऑफिस में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, लिटिल हेल्प क्लब। रूल सिर्फ एक था, हर एम्प्लॉय महीने का सिर्फ 100 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, जो दे सकता है वो ज्यादा भी दे सकता है, कोई फोर्स नहीं है। पहले महीने सिर्फ 23 लोग जुड़े, लेकिन दूसरे महीने में 81 लोग जुड़ गए। एक साल के अंदर पूरी कंपनी जुड़ गई। उस फंड से 42 बच्चों की स्कूल की फीस भरी गई, 18 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ, 70 सीनियर स्टूडेंट्स को राशन दिया गया, फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज तक रिलीफ पहुंचाई गई, और सबसे खास बात, किसी भी न्यूज़पेपर में फोटो नहीं छिपी, किसी सोशल मीडिया में पोस्ट नाम नहीं डाला गया, सिर्फ लोगों की दुआएं मिली। और क्या, एक बार अमन ऑफिस से घर जा रहा था, सिग्नल पर एक छोटा सा लड़का पेन बेच रहा था, लोग उसे डांट रहे थे। अमन ने उससे पूछा, स्कूल जाते हो? लड़का बोला, पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से मैंने स्कूल छोड़ दिया। अमन ने उस बच्चे से सारे पेन खरीद लिए, लेकिन पेन लेने के बाद वो बोला, कल से पेन नहीं बेचना, स्कूल जाना। उसने उस लड़के का एडमिशन एक एनजीओ के थ्रू करवा दिया, उसका नाम था इमरान। उस दिन अमन को नहीं पता था ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, अमन की जो आदत थी हर इंसान को मदद करने की, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी इंसानियत, और वो उस इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखे हुए था। इसीलिए हर किसी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती थी, तो अमन उसके लिए हमेशा खड़ा होता, चाहे वो जिस प्रकार उसे हेल्प कर पाए। जैसे प्यून की बच्ची की आधी फीस भर दी, उसके पास शायद पूरे फीस भरने के पैसे ना हो, इसलिए उसने आधी फीस भरी, बच्चे के पूरे पेन खरीद लिए। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करता जिससे जो भी परेशान है, जिसे भी हेल्प की जरूरत है, उसे वो करे और इंसानियत का पैगाम और आगे पहुंचाए। तो आगे इमरान को मदद करने के बाद इमरान क्या स्कूल पढ़ पाएगा, क्या इमरान स्कूल जाएगा, या फिर इमरान फिर से उस सिग्नल पर आके पेन बेचेगा, क्या होगा कहानी में, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि कहानी के खत्म होने होने तक आप इस कहानी से एक ऐसी सीख जरूर लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए HRA 90 FM पर बहुत मजेदार गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM पर। आप सुन रहे कहानियों गुल्लक, कहानियों की गुल्लक आरजे शब्बीर के साथ। जैसे हम जान रहे कि इमरान की मदद कर दी, पेन खरीद कर उसे एनजीओ के द्वारा एक एडमिशन करवा दिया।

उसने मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बोतल पानी देकर जीत लिया था। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नजर अमन पर थी। उस दिन पहली बार कंपनी को पता चला कि एक छोटी सी मदद ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही छोटा लड़का इमरान फिर से अमन की जिंदगी में लौटने वाला था, और इस बार मदद का असली मतलब दुनिया देखने वाली थी। 3 साल बीत चुके थे, अमन को अब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, सैलरी अच्छी थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। पापा ने अब काम से रेजिग्नेशन दे दिया था। माँ अब अपने जो शौकिया तौर पर गाने गाती थी वो पूरे करने में लगी थी, लेकिन चीज नहीं बदली। और वो एक चीज थी, हर फ्राइडे अमन किसी ना किसी की बिना नाम बताए मदद करता था। उसका मानना था मदद का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को सिर्फ इंसानियत याद रहे, मदद करने वाले का नाम नहीं। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था। हाईवे पर उसने देखा कि एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है। डजन्स लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कोई इंजर्ड आदमी के पास नहीं जा रहा था। अमन तुरंत अपनी कार रोककर भागा, उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, अपनी शर्ट फाड़ कर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर्स बाहर आ गए और बोले, अगर पेशेंट 10 मिनट और लेट आता तो बचना मुश्किल था। अमन चुपचाप वहां से निकल गया। उसने अपना नाम भी रजिस्टर में नहीं लिखवाया। कुछ महीने बाद कंपनी के एनुअल सीएसआर इवेंट हुआ, चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर इमरान शेख। अमन ने नाम सुना और हैरान रह गया। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का आया, स्पीच शुरू हुई। आज जो मैं हूं उसका क्रेडिट मेरी मेहनत को कम और 2 अननोन हीरोज को ज्यादा जाता है। सब ध्यान से सुनने लगे। पहला हीरो, एक इंसान जिसने बचपन में मेरे सारे पेन खरीदने के बाद मुझे स्कूल वापस भेजा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इमरान ने स्टेज से अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे आज भी याद है, उस भैया ने कहा था जिंदगी पेन बेचने के लिए नहीं सपने लिखने के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और दूसरा हीरो, डॉक्टर इमरान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दूसरा हीरो मुझे कुछ महीने पहले मिला था, या शायद मिला भी नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही वो पेशेंट था। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी अननोन इंसान ने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, नाम तक नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, आज भी मैं उस हीरो को ढूंढ रहा हूं। अमन चुप था। राजेंद्र मेहता जो ऑडियंस में बैठे थे सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा कुछ मदद अप्लॉज के लिए नहीं होती। अमन सिर्फ मुस्कुराया। फिर क्या, उसी शाम राजेंद्र जी ने एक अनाउंसमेंट की, आज से हम कंपनी के लिटिल हेल्प क्लब को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना रहे हैं। नाम रखा गया लिटिल हेल्प फाउंडेशन। फाउंडेशन का मिशन बहुत सिंपल था, हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी मदद करे, ना करोड़ों का डोनेशन ना बड़े प्रोमिसेस, सिर्फ एक छोटा सा काम, किसी को रोड क्रॉस करवाना, किसी स्टूडेंट्स की फीस भरना, किसी को ब्लड डोनेट करना, किसी को जॉब रेफर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान की बात सुन लेना। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए। फाउंडेशन पूरे इंडिया के कई शहरों में काम करने लगी, हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए, लाखों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। मीडिया ने राजेंद्र जी से पूछा, सर इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? राजेंद्र जी ने टेबल पर रखी एक

पुरानी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाई और बोले इस बोतल से। रिपोर्टर हैरान रह गए। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़के ने अपना आधा पानी एक अनजान बुजुर्ग को दे दिया था। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक बोतल पानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज कई साल बीत चुके हैं, अमन के बाल सफेद होने लगे हैं। एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा था, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती आई, दादू आपकी स्टिक गिर गई। उसने स्टिक उठाकर अमन को दे दी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा थैंक यू बेटा, तुमने मदद क्यों की? बच्ची बोली मम्मी कहती है छोटी सी मदद कभी छोटी नहीं होती, पता नहीं वो किसकी पूरी दुनिया बदल गई। अमन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे राजेंद्र जी बात फिर से सुन रहे हो। इंसान अपनी कमाई से अमीर नहीं बनता, अपनी मदद से बनता है। और उस पल अमन को समझ आया एक बोतल पानी से शुरू हुआ सफर एक सोच बन चुका था, एक आदत, एक मूवमेंट, एक मिसाल बन चुका था। कभी भी किसी छोटी मदद को कम मत समझना। एक मुस्कान, एक ग्लास पानी, एक हौसला, एक रेफरल, एक सही वक्त पर दिया गया सहारा किसी की पूरी जिंदगी डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक आधी पानी की बोतल से शुरू हुआ सफर आज इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर चुका था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी हो, लोगों की मदद करिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM। बहुत मजेदार गाने, बहुत मजेदार कहानियां, और मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियों के गुल्लक सिर्फ आचार्य 90 FM पर।

पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कंफर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौसिखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है, तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज ए स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए, फिर उस पर नींबू निचोड़िए, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मींस कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाएं हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

से पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से इसे गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुफ्त उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपीज से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है, भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे

गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाए। इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज कीजिए। फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरिगानो सीड्स और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी 1 चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सबको मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है।
गदाधारी भीम, जिनमें हजार हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात यह है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं अच्छा एनआईटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइनटी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य 90 एफएम पर बजने वाला गाना ये तो सुपरहिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, घर में पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कंपटीशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी? ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की गोलियां।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई, और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था। 150 मीटर, 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया, और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन, अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स सर की आंखों में आंसू आ गए, कांग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला, बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए, पागल हो गया है क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला, सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा, घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सेलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे,
सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर

अर्जुन स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सिलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी, अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी मां के बेचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ एक महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: आदरी ने मैं मेरा साथ दी। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
5: Yeah!

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीस स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी मां चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा रह रहा था और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए, और इतने जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है। और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए हिम्मत, दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश, सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके खांधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट अंदोस आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के उल्लेख में। कहानियां आपकी जिंदगी को बदल देती है, कहानियां जिसे सुनकर आपको नींद आती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में ठहराव लाती है, कहानियां जो आपको जीने का मकसद देती है, कहानियां जो प्रेम को अलग अलग रूप देती है, कहानियां जो दादियां सुनाती है, कहानियां जो जीने का मकसद बताती है, कहानियां जो एक शर्ट के बटन में छुपी होती है, कहानियां जो गुल्लक के सिक्के में छुपी होती है, कहानियां जो बालियों की खनक में छुपी होती है, कहानियां जो पायल में बसती है, कहानियां जो सितार में सुनाई देती है, कहानियां जो राग में सुनाई देती है, कहानियां जो नजारों में नजर आती है, कहानियां जो पंछियों के झुंड में नजर आती है, कहानियां कहानियां कहानियां। तो दोस्तों कहानियां हर जगह, बस जरूरत है तो उन्हें सुनने की, उन्हें महसूस करने की। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूं मैं आज कहानियों के गुल्लक में, जिसका नाम है एक छोटी सी मदद। मुंबई की भीड़भाड़ भरी लोकल ट्रेन सुबह के 8:45। सब लटकते हैं इस ट्रेन में, कभी जाके देख लो आप मुंबई में, अगर आप कभी लोकल से ट्रैवल करो तो आपको नजर आएगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होता है, इन 4 घंटों में अगर आप ट्रेन में चढ़ भी पाए तो ये आपके लिए किसी ड्रीम को अचीव करने से कम नहीं होगा। बहरहाल सुनते हैं कहानी को। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज की तरह लोग भाग रहे थे, किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज और किसी को इंटरव्यू। इसी भीड़ में एक 24 साल का लड़का था, अमन, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पापा एक नॉर्मल मजदूर थे, माँ हाउसवाइफ थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पिछले 1 साल से जॉब नहीं मिली थी। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसके बैग में सिर्फ एक फाइल रखी थी और पॉकेट में बस 120 रुपए। ट्रेन आई और सब लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। अमन भी किसी तरह ट्रेन में अंदर